0: A gripping new trailer has officially dropped for Operation Save Safed Sagar. The epic military drama series chronicles an untold chapter of the 1999 Kargil War. Starring Jimmy Shergill and Siddharth, the series is slated to premiere on 7th of August. Operation Safed Sagar has been created by Abhijit Singh Parmar and Kushal Shivastava.
1: टारगेट 18,000 फीट पर है, बॉम्बिंग 30,000 फीट से करनी होगी।
2: मिशन से फीलिंग आ रही है?
3: ऑफकोर्स फीलिंग आ रही
2: है। ऊपर बैड वेदर, नीचे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, खतरा ही खतरा है।
4: अगर हमने कुछ नहीं किया तो इस बर्फ में हमारी ग्राउंड फोर्सेस की सिर्फ लाशें नजर आएंगी।
5: जीती हुई जंग से अब पाकिस्तान की आर्मी पीछे नहीं हटेगी।
6: फॉर्मेशन फाइटर जेट्स की नहीं, फाइटर्स की होती है। गोल्डन एरोस, क्या हम तैयार हैं?
7: हम हैं सर, वी आर फुल्ली रेडी।
8: नीचे जाएंगे तो साथ में सर।
9: इट इज टू रिस्की।
10: का चांस सिर्फ 5% है।
11: ऑन द वे।
12: क्यों नहीं आने दिया सर उन्होंने अपने साथ मुझे?

0: जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं। आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। उनको 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है। साढ़े 7 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है। और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, जीरो। तो यह पहला कारण है। दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है। जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, एक नीट एग्जाम के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं। आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे, और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम 1.32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल स्टूडेंट इन दिस कंट्री, दिस इज अ इंसल्ट टू एवरी सिंगल फैमिली इन दिस कंट्री। और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं, ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है, ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम है। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है, देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे, और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है, उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए है वो घुसेगा। पहला दरवाजा मैन्युफैक्चरिंग, चाइना का माल कोने कोने में बिकता है, हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन खत्म है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज खत्म है। पहला दरवाजा बंद। दूसरा दरवाजा एंटरप्रेन्योरशिप का, बैंक का सारा पैसा 2-3 बिजनेसेस के हाथ में जाता है। आप में से कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, दरवाजा बंद। टीवी पे एड जाएंगे एंटरप्रेन्योर बनो, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए लोन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, वो नहीं मिलेगा। दूसरा दरवाजा बंद। तीसरा दरवाजा कॉर्पोरेट जॉब, आईटी जॉब, जो हिंदुस्तान की सक्सेस रही है, उसको एआई ने खत्म कर दिया है, खत्म कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बंद, पूरा प्राइवेटाइज कर दो, खत्म कर दो, तो एक ही रास्ता है वो सरकार वाला, गवर्नमेंट एग्जाम। और फिर उसमें कहते हैं सबसे पहले पूरी अपनी आमदनी दो, उसके बाद हम सिस्टम को रिग करेंगे, और आप लोग मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग अपना पैसा डालो, और जिसके पास 40-50 लाख रुपए है वो पीछे से बैकडोर से घुस जाएगा। ये तीन कारण है कि दिल्ली के स्टूडेंट्स, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स गुस्से में है, बाहर है। इनको क्या कमिटमेंट चाहिए? ये कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे। सबसे पहला कमिटमेंट जो सिंबल है इस चीज का, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। बड़ी बात नहीं है, सुइसाइड हुए बच्चों के, 152 पेपर लीक्स हुए। स्टूडेंट्स की पहली मांग यह है, इनको हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, जो आपने अभी वीडियो देखा पूरी सोशल मीडिया पे, मतलब हजारों स्टूडेंट्स पे लाठी चल रही है, राइफल्स पॉइंट हो रही हैं, टांगे तोड़ी जा रही हैं, पैलेट गन से मारा जा रहा है, ये आतंकवादी नहीं है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे लोग हैं, हमारा फ्यूचर है। तो इन लोगों पर जिन्होंने वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। यह स्टूडेंट्स की दूसरी मांग है। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये तीन डिमांड्स हैं, वी आर 100% सपोर्टिंग एवरी सिंगल स्टूडेंट एंड वी आर फुली बिहाइंड यू एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट यू आर प्रोटेक्टेड एंड योर फ्यूचर इज प्रोटेक्टेड। थैंक यू।
1: थैंक यू राहुल जी। फर्स्ट क्वेश्चन संजीव चोपड़ा, पीटीआई।
0: अच्छा, वन सेकेंड। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स है, उनका फ्यूचर है, वो क्या चाहते हैं कि बात उनकी इशू पे रहे। उनकी इशू क्या है? एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक, ये जो हुआ, इनको जो मारा गया, ये चाहते हैं कि शिक्षा पर, पेपर लीक पर, वायलेंस पर पूरे देश का फोकस रहे। मैं भी चाहता हूं और पूरा ऑपोजिशन चाहता है कि फोकस यहां रहे और इसके बारे में कुछ किया जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। और ये जो तीन डिमांड्स है स्टूडेंट्स की, दिल की डिमांड्स हैं, जो उनको चोट लगी हैं, उस आवाज से ये बोल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी तरफ क्या है? डिस्ट्रैक्शन, कि ध्यान इधर उधर करो, कभी ध्यान उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ, कभी आगे ले जाओ।

0: क्या हो, दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स डिस्ट्रैक्ट कर रही है और दूसरी दूसरी फोर्स फोकस करने की कोशिश कर रही है। थैंक यू।
1: जीव चोपड़ा जी, माइक दो भाई।
2: राहुल जी, वी've ऑल सीन व्हाट हैज हैपेंड विद द स्टूडेंट्स ऑन मंडे, वी've ऑल्सो सीन व्हाट हैज हैपेंड यस्टरडे विद द प्रोटेस्टिंग MPs राइट आउटसाइड द प्राइम मिनिस्टर्स रेजिडेंस। यू नो द मैनर इन विच द लीडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज रफ्ड अप, मैन हैंडल्ड एंड बीटन अप एंड रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोटेस्ट साइट, वॉट वुड यू से ऑन दैट? एंड बट द गवर्नमेंट हैज अक्यूज्ड यू ऑफ क्रॉसिंग द लाइन एंड नॉट बिहेविंग इन अ मैनर बिफिटिंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
0: This to me, this how I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the cost that these children have been forced to pay. So do whatever you want to me. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learned from it.
2: And the government's allegation on you?
0: I don't care about government's allegations. Government's allegations are of no consequence to me.
1: Siddharth, ANI.
3: Rahul ji, my question is कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन आपको लगता है विपक्ष को कि उससे ही निकल जाएगा, क्या होना चाहिए? दूसरी बात ये कि इतने कई सालों में, पिछले 30-40 सालों से ज्यादा के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे देश का, हमने नहीं देखा कि विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे, उनके घर के बाहर पहुंचे हो। क्या वजह रही कि आप लोगों को वहां जाना पड़ा? और अब सरकार से भी आप मांग कर रहे हैं कि डिस्कशन हो, और सरकार की तरफ से किरण रिजिजू आ जाए, उन्होंने कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, लेकिन किस नियम के तहत करेंगे वो सरकार को तय करने दिया जाए। तो अगर सरकार किसी नियम के तहत आप लोगों से बात करती है,
0: आपने बहुत लंबा बोला भैया, आपके क्वेश्चंस क्या है?
3: मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वजह रही कि आप लोगों को प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचना पड़ा, और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सॉल्यूशन?
0: इसके दो कारण है। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए, और हमने स्पीकर से कहा, देखिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा, मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड, धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन अबाउट हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड। दैट सिंबल हैज टू बी रिमूव्ड। Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number one. Number two, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama. We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who's going to hold it,

0: not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition. At least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. और हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल इशू है और ये सेंट्रल इशू पर रेजोल्यूशन आए. प्रधान जाए, प्राइम मिनिस्टर अपोलोजाइजेस, एवरीवन हु असॉल्टेड स्टूडेंट्स इज द फर्स्ट स्टेप, देन वी वांट टू सी चेंजेस बीइंग मेड टू द टेस्टिंग सिस्टम, वी वांट टू सी चेंजेस बीइंग मेड टू द अमाउंट ऑफ मनी पीपल आर चार्जिंग. थैंक यू.
1: IANS.
2: सर, मेरे दो सवाल हैं. पहला सवाल ये कि जितेंद्र सिंह जब आपसे मिलने आए थे, जब आप प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे धरना दे रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने बात पे अडिग नहीं है, बार बार वो चेंज कर रहे हैं, गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं. दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि सभी अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो इस मामले में एक हैं, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिन्होंने जिसके सांसद संजय सिंह हैं, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी छात्रों के आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं, हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं. इस पर क्या कहेंगे?
0: देखिए, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं छात्रों के आंदोलन को, ठीक है? मेरे मुंह से खून निकल रहा था कल. हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात. आपका पहला क्वेश्चन क्या था? जितेंद्र सिंह इज इरेलेवेंट इन दिस डिस्कशन. आई मीन, आई एम नॉट, इज अ इरेलेवेंट फेलो. हाँ, ही कैन से व्हाटएवर ही वांट्स. He can say whatever he wants. He's an irrelevant part of this discussion. The discussion is very simple. We have clear demands. Demand number one, Dharmendra Pradhan goes. Not our demands. Student demands. Number one, Dharmendra Pradhan goes. Number two, anyone who assaulted the students is punished. Number three, Prime Minister must apologize to students.
3: In-depth coverage of global issues broken down into facts, figures, and simple words. Backed with analysis from field experts who truly matter. Because we believe in decoding the real picture for you. Week after week, creating the maximum impact. Watch We on Wide Angle at these times on We on World is One. Get the latest update.
4: Destroy their
3: breaking
4: missiles
3: news.
4: And raise their...
3: Credible, clear, continuous. Experts across aisles. Diverse voices, one platform. Beyond World is One. From the bustling trading floors of Wall Street to the vibrant exchanges of Asian stock markets, We On breaks it down for you to make sense of what's happening. As we reveal the key factors behind events, strategic battles, and the game-changing business decisions that shape the world. We bring you all of this and more on World Business Watch.
5: This is our brand new edition of South India, a daily dynamic show that will capture the pulse of the southern Indian state.
6: It's by blending special stories, stories of the day, breaking alerts and cultural witness.
7: From the Delhi.
8: The earth is sending distress signals. Wildfires, droughts, and melting glaciers. Can we reverse the damage? Explore the harrowing effects of climate change. It's a wake-up call. Global

0: were sitting in non-violent protest. These students were demanding something legitimate.
1: हम इस बात के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति

0: Well, the BJP is holding a press conference right now. Let's just listen in to what the leaders have to say.
1: छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं, उनके साथ अन्याय न हो और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत

0: गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हरेक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं आपके हैं, वो देश की के भविष्य हैं। हमारी जिम्मेवारी में विपक्ष की जिम्मेवारी भी है, इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मेरी तरफ से इतना ही कहना है। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: एक मिनट, दो तीन सवाल ले पाएंगे, ज्यादा सवाल ले नहीं पाएंगे हम लोग। आमोद राय
0: वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी। उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा, उन्होंने वो सारी बातें लिखी है। मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे।
1: नीरज पांडे, कोई बात नहीं पूछेंगे। नीरज पांडे,
0: आज कोई चर्चा नहीं है।
2: Right, that's the latest at this hour on We on Fine Print. Thank you for watching. Do stay with us. This is We on Wildest One.

0: Well, the BJP is holding a press conference right now. Let's just listen in to what the leaders have to say.
1: छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय न हो और भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मामले में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत गंभीर है और बहुत गंभीरता से हमने इन विषयों को लिया है और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है 12 घंटे लेना है 18 घंटे लेना है

0: राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और विपक्ष को इस बात को ध्यान में लेकर के उसे गोल पोस्ट नहीं चेंज करना चाहिए। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। हम इस समस्या का किस तरीके से निदान कर सकते हैं उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। और पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त फोरम है जहां हम गहराई से इसकी चिंतन कर सकते हैं। ड्यूरेशन विपक्ष तय करे और उसमें हरेक एस्पेक्ट्स के बारे में चर्चा हो और हम कोई ठोस नीति लेकर के आए, क्योंकि बच्चे कोई हमारे हैं, आपके हैं, वो देश की के भविष्य हैं और देश के भविष्य के की चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है और हमारी जिम्मेवारी में सरकार के साथ साथ विपक्ष की जिम्मेवारी भी है। इसलिए विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी को निभाए और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान करें और कोई स्थायी समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ें, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज मेरी तरफ से इतना ही कहना है। मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार जिम्मेवार सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, ये हमेशा आतुर है कि सभी बातों की संसद में चर्चा होनी चाहिए और हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
1: एक मिनट, दो तीन सवाल ले पाएंगे, ज्यादा सवाल ले नहीं पाएंगे हम लोग। आमोद राय
0: वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी। उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा, उन्होंने वो सारी बातें लिखी है। मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे।
1: नीरज पांडे कोई बात नहीं पूछेंगे, नीरज पांडे
0: आज कोई चर्चा नहीं है।
2: Right, that's the latest at this hour on We on Fine Print. Thank you for watching. Do stay with us. This is We on Wildest One.